0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और

0: युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रखे।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: कुछ किताबां पढ़न वालियां हुंदिया ने, कुछ किताबां सांभण वालियां हुंदिया ने, ते कुछ कु किताबां कोट कोट के पीण वालियां हुंदिया ने।
1: आओ हुण सरवण करते हैं भक्ति संगीता प्रोग्राम आराधना।

आओ इन्हां पलां नूं सार्थक कर लिए उस परमात्मा दी याद नाल, उस दे ध्यान दे नाल, मन दी उदासी, मन दे हनेरियां नूं उस दी रोशनी दे नाल उज्जवल कर लिए।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

0: द्वित्रिदिनेषु हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे साल 2026 लई 66 उगियां शख्सियतां नूं पद्म पुरस्कार प्रदान कीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो सिक्किम दे 3 दिनां दौरे ते होणगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रीख्या विच वार वार आ रहियां खामियां ते चिंता प्रगट करदिआं कहा कि इह दुख दी गल है कि नैशनल टैसटिंग एजेंसी ने पिछले पेपर लीक तो कोई सबक नहीं सिख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोरंजन ते मेहमान नवाजी संस्थावां विच बाल मजदूरी ते सख्त पाबंदी लगाउण दी मंग करन वाली एक जनहित पटीशन ते केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी कीता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवी दिल्ली विच जापान दे विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु नाल गलबात कीती। सरकार देश विच पेट्रोलियम उत्पादां दी सुचारू सप्लाई यकीनी बनाउण लई हर संभव कोशिश कर रही है। पंजाब विच नगर निगमां, नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं चोणां लई अज वोटां पै रहीआं ने। सड़क आवाजाई ते शहरा मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश विच 1947 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय शहरा प्रोजैक्टां दी प्रगति दी समीख्या कीती। पंजाब सरकार वल्लों ईद उल जुहा बकरीद दे संबंध विच सूबे दे समूह सरकारी दफ्तरां, बोर्डां, कारपोरेशनां ते सरकारी विद्यक अदारियां विच 28 मई नूं गजटड छुट्टी दा ऐलान ते मौसम विभाग ने अगले 2 दिनां दौरान पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच लू चलण दी पेशिनगोई कीती। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ।

देखो जी, असल रंगरेस तो उस कुदरत नूं कहा गया है जो सूरज दीआं सुनहरी किरणां दे नाल एक बहुत ही खूबसूरत रंग धरती ते पैदा करती है। अजिहा उज्ज्वल रंग जिस नाल हरेक चेहरिआं ते चमक आ जाती है, रोशनी आ जाती है। वह रंगरेस फुल्लां च अलग अलग तरह के रंग भरदा है, पंछियों के खंभां ते वह रंग उकरदे ने। ये रंग साडी जिंदगी दे विच

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: सोने से प्रोग्राम तो इस वेले आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से सुन रहे हो। 7:32 हो गए ने। 26 मई का अज दिन है, तो जेकर अज के दिन अज की तरीक दे नाल याद आता कोई जरूरी काम है तुहानू, तां तुसीं सोच सकते हो कि अज के तरीक दे विच कोई जरूरी काम तो नहीं करन वाला। वैसे सोचा तो यह भी जाना चाहिए कि अज के दिन असीं किहड़े जरूरी काम निपटाने ने, क्योंकि हर दिन सानू ये मौका दिंदा है, ये बहुत ही जरूरी सुनेहा दिंदा है कि एक एक पल कीमती है, तो असीं इसनू किवें भरपूर इस्तेमाल करना है। अज के दिन के इतिहास से एक पन्निया से जेकर असीं गल करिए, तो अज के दिन 2014 च बहुत ही महत्वपूर्ण भारत सरकार दे खेतर दे विच बदलाव होया सी। नरेंद्र मोदी हुणा ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली सी। 1679 च ब्रिटेन की संसद ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून पास किया, जिसनों नागरिक आज़ादी ते निजी आज़ादी का पहला वड्डा मानव अधिकार कानून मनिया जाता है। इस तरह 1926 च लेबनान ने अधिकारिक तौर पर अपना नवा संविधान बनाया सी। 1748 च मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ते ईरान दे कादर नादिर शाह विचाले एक संधि हुई, जिस कारण अफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य तो अलग हो गया। ये भूगोलिक खेतर ते भारत दे संबंध विच एक वड्डी घटना सी। 1999 च इसरो ने एक वड्डी कामयाबी हासिल की।

जीने लगा वही जिसे इश्क ने मारा। इसे गीत तो मिर्जा गालिब होना का शेर भी याद आता है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। किनी खूबसूरत गल है ना। सो ए गीत संगीत ए शेरो शायरी खूबसूरत अंदाज दे विच साड़ी कोल जिवें एक सौगात दे वांग है। तुसी इन्हां गीतां नूं सुन के महसूस किया होएगा कि मौसम चाहे किहो जिहा ही होवे, कंडीशन साड़ी जिंदगी दे विच किहो जिहा क्यों ना होण, पर ए संगीत मन नूं हल्का कर देंदे ने, तरोताज़ा कर देंदे ने। तो तुहाडा अज दा दिन इसे तरह तरोताजगी दे नाल भरपूर रहे, खुशनुमा रहे, इसे उम्मीद दे नाल ही अज दा ए प्रोग्राम खत्म करन दी मैनू पूनम नूं हुण इजाजत दिओ। नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
2: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरिमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास

0: ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की

0: बहुकोणी मुकाबला है जिस विच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल अते भारतीय जनता पार्टी समेत सारिया प्रमुख राजनीतिक पार्टिया ने अपने उम्मीदवार मैदान विच उतारे ने। राज चोन कमीशन दे अनुसार सूबे भर विच कुल 1896 वार्डा विच 7555 उम्मीदवार चोन लड़ रहे ने अते इस समय 32,000 पुलिस कर्मचारियों की भारी पुलिस तैनाती विच वोटिंग चल रही है। सारिया नगर निगम संस्थावां विच आदर्श चोन जाबता पहला ही लागू है अते स्वतंत्र अते निरपक्ष यकीनी बनाने लई IAS अते सीनियर PCS अधिकारियों नूं भी जनरल ऑब्जर्वर वजों तैनात किया गया है। वोटरां दी भागीदारी नूं उत्साहित करने लई पंजाब सरकार ने अज सारियां लई जनतक छुट्टी घोषित की है अते उद्योगिक अते व्यापारक अदारियां विच योग कर्मचारियों लई तनखाह वाली छुट्टी भी प्रदान की है। वोटां दी गिनती शुक्रवार 29 मई नूं होवेगी। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
1: सिविल हवाबाजी डायरेक्टोरेट जनरल ने इबोला वायरस संबंधी निर्देश जारी किए ने। यह कदम विश्व सेहत संगठन वालों कांगो ते युगांडा विच इबोला दे प्रकोप नूं अंतरराष्ट्रीय जनतक सेहत एमरजेंसी ऐलानन तो बाद चुकिया गया। डायरेक्टोरेट जनरल ने कहा कि युगांडा अते कांगो तो उड़ाना चलाने वाली हवाई कंपनियां नूं मुसाफरां दे उतरन तो पहला यात्री जानकारी फार्म लाजमी तौर पर भरवाना ते इकट्ठा करना होगा। मुसाफरां नूं उड़ान दौरान बुखार, कमजोरी, मांसपेशियां च दर्द, सिर दर्द, गले च खराश, उल्टी जां दस्त वर्गे किसी भी लक्षण की रिपोर्ट करन दे निर्देश दिए गए ने। जहाज़ के पिछले हिस्से विच शक्की मरीज़ नूं अलग करन ते नेड़लियां सीटां खाली रखने के निर्देश दिए गए ने। हवाई कंपनियां नूं मास्क, दस्ताने, PPE किटां, सैनेटाइजर वर्गियां जरूरी सप्लाइयां दी ढुकवीं उपलब्धता नूं यकीनी बनाउण दे निर्देश भी दिए गए ने। आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने कहा कि सरकार योग अते कुदरती इलाज राही देश च बीमारी रोकथाम सेवावां नूं मजबूत कर रही है। कल नवीं दिल्ली च आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार कमेटी की मीटिंग की प्रधानगी करदिआं श्री यादव ने कहा कि योग ते कुदरती इलाज भारत के प्राचीन तोहफे ने ते हुण विश्व सेहत मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे ने। श्री यादव ने दस्सिआ कि देश भर में कुदरती इलाज ते योग विज्ञान के 70 तों वध कॉलेज ते 5,000 तों वध योग सिखलाई संस्थावां काम कर रही ने। भारत समेत दुनिया भर तो लखां लोग अज साउदी अरब विच हज करनगे। 5 दिन हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी च एकत्र हुए। हज यात्री अज पूरा दिन अराफात के मैदान च इबादत ते दुआवां च बिताउणगे। इस तो बाद हज यात्री निमरा मस्जिद विच हज का विशेष संदेश खुतबाए हज सुनणगे अते दुपहर ते शाम की नमाज़ अदा करनगे। सूरज डुबण तो बाद ओ मुज़दलिफा लई रवाना होणगे। कल सवेरे हज यात्री मीना वापस परतणगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले च सुरक्षा बलों ने डोरीमल जंगल खेतर च एक दहशतगर्दी टिकाने नूं तबाह कर दिता है। यह कार्रवाई ऑपरेशन शेरूवाली के तहत एक सर्च ऑपरेशन दौरान हुई। ऑपरेशन दौरान सुरक्षा बलों के दहशतगर्दों विचकार गोलीबारी हुई। टिकाने तो भोजन, कपड़े ते होर समगरी बरामद की गई है। ड्रोन ते सुईया कुत्तियां दी मदद नाल खेतर च खोज कार्य जारी ने। मौसम विभाग ने अज दिल्ली में लू वगन बारे येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी च कल तक लू की स्थिति जारी रहन ते वध तो वध तापमान 44 तों 46 डिग्री सैलसीयस के दरम्यान रहन की पेशीनगोई की गई है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विदर्भ ते पछमी राजस्थान च भी अज अत की गर्मी पैण बारे संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख अते होरना कई थावां ते इस तरह के हालात बने रहेंगे। इस दौरान उत्तर पूर्वी भारत, बिहार, उप हिमालयन, पछमी बंगाल, सिक्किम, केरल ते महे विच भारी बारिश की पेशीनगोई की गई है। अमरीकी फौज ने ईरान नाल जारी जंगबंदी विचकार हॉर्मुज़ जलमार्ग नेड़े ईरानी मिजाइल परीक्षण केंद्रां अते किश्तियां नूं निशाना बनाया। सेंटकॉम दे बुलारे टिमोथी हॉकिंस ने दस्सिया कि हमलों च उन्हां टिकाणां नूं निशाना बनाया गया जिथे मिजाइलां तैनात कीतियां जा रही सन अते जो किश्तियां बारूदी सुरंगां लगाउण दी कोशिश कर रही सन। उन्हां कहा कि अमरीकी फौज जंगबंदी दौरान संजम वरत रही है ते अपने सैनिकां दी सुरक्षा लई कार्रवाई कर रही है। IPL क्रिकेट में अज पहले क्वालीफायर मुकाबले मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स नाल होगा। यह मैच धर्मशाला शामी 7:30 बजे खेडिया जाएगा। इस मैच की जेतू टीम सीधे IPL 2026 के फाइनल च पहुंचेगी जबकि हारन वाली टीम नूं क्वालीफायर 2 च एक होर मौका मिलेगा। कल मोहाली में एलिमीनेटर मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स नाल होगा। हारन वाली टीम टूरनामेंट तो बाहर हो जाएगी जबकि जेतू टीम क्वालीफायर 2 च पहुंच जाएगी। पंजाब किंग्स से अपनी जित तो बाद रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु प्ले ऑफ लई क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई। फुटबॉल विच भारत ने कल गोवा के मड़गांव च सैफ मैला चैंपियनशिप च ग्रुप बी मुकाबले च मालदीव नूं 11-0 नाल हराया। अविका सिंह ने 4 गोल किए जबकि प्रियंका नोरेम ते करिश्मा ने 2-2 गोल किए। अज तो शुरू हो रहे सिंगापुर विच ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट विच लक्ष्य सेन ते PV सिंधु

0: हो गया इंतजाम।
1: किस दा?
0: गुड्डी दी फीस दा।
1: दिखा 20,000 दा लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज किन्ना है? लोन सिर्फ नियंत्रित संस्थावां तो ही लो। लोन दा विचार लोड अनुसार, वो भी चेक करके। हो गया इंतजाम, तनखा एडवांस च भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
4: अगला गीत असानू माण मथना दा फिल्म चो हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला दा गाया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां।

चलते चलते फिल्म दे गीत, आज दे फिल्म संगीत प्रोग्राम च तुसी सुन रहे हो। इस फिल्म दे गीत जावेद अख्तर होना ने लिखे सन ते संगीत आदेश श्रीवास्तव दा सी। इस फिल्म दे गीत इन्ने ज़्यादा पॉपुलर हुए सन कि उस समय दे सब तो पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग्स बन गए ते एल्बम ने लगभग 1.8 मिलियन यूनिट्स वेचियां सन। जेकर असी इस फिल्म की कास्टिंग की गल करिए, इस फिल्म की कास्टिंग बॉलीवुड की सब तो इंट्रस्टिंग कास्टिंग चेंजेस विचों एक मनी जाती है, क्योंकि फिल्म में पहला राणी मुखर्जी नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन कास्ट किया जाना सी। कुछ सीन शूट भी हो चुके सन पर बाद विच उन्हां दी थां राणी मुखर्जी नू लिया गया। सो इस तरह ये कास्टिंग चेंजेस दे विचों एक बेहतरीन उदाहरण मनी जाती है ते बहुत हैरानीजनक भी। दिलचस्प गल ये है कि राणी मुखर्जी नू ये रोल सब तो पहला ऑफर होया सी पर उन्होंने साथियों की शूटिंग करके इस नू मना कर दिता सी, पर बाद विच वो फिर इस फिल्म दे नाल जुड़ गए सन। ते ये फिल्म सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੂਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬੈਕ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मनतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,

0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने? हम जिनसे आशा भी नहीं करते, वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के

0: भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी।

0: राजा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
0: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंका जनाब।
6: अरे ये क्या हुआ?
7: ये क्या हुआ?
6: अरे
7: बचो,
6: फट जाए।
0: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
8: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
9: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
10: May I come in, sir?
8: Yes, come in.
10: Sir.
8: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
10: सर।
8: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
10: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
8: हाँ हाँ, कहो।
10: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
8: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
10: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
8: गो अहेड यंग मैन।
10: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो

0: पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
4: जी जनाब।
5: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
2: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को कवर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
2: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
2: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: तुसी सुन रहे सी NCERT वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।
6: खेडा नू उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा खूबसूरत उपराला प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे। क्रिकेट स्टेडियम कौन कर रहा चौकियां छिकियां दी बरसात, हॉकी च किन्ने गोल दाग के किन्नू दित्ती मात, कुश्ती दे गद्दियां ते दाल आके कौन जितया बाजी ते किन्ने सुनहरे निशाने ला के देशवासियां नू कीता राजी। खेड मैदान दी दिलचस्प कहानी, खिडारियां दा जनून उना दी ही जुबानी। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz 'ਤੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼।

0: हेलो, फरमाइश प्रोग्राम चल रहे थे, इस प्रोग्राम से अगले कॉलर दोस्त देखते हैं कीड़े आई नहीं। हेलो हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हो जी?
1: अजय सिंह बोल रहा हूँ। सरसा जाना जी, गाना अच्छा मोहम्मद रफी आज कोई भी सुना दो।
0: अच्छा जी, ठीक है जी, जरूर सुनावांगे। मोहम्मद रफी उन्होंने आवाज़ भी, तुसी कोई भी गीत सुनना चाहते हो? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इन्होंने मोहम्मद रफ़ी हुणां दी आवाज़ विच कोई भी गीत सुन की फरमाइश की है, तो यह गीत असीं चुन के लैके आए हैं तीसरी मंजिल फिल्म च उन्होंने पसंद, तो आवाज़ मोहम्मद रफ़ी हुणां दी है, नाल आशा भोसले होनी।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एह कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਮ।
1: ਨਮਸਕਾਰ
2: ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਡਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ।
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਕਾਲ ਕੀਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਆ ਆਪਕਾ?
2: ਚਰਨ ਸਿੰਘ।
1: ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ?
2: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
1: ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪ?
2: किसान हूँ हम, खेती बाड़ी का काम करते हैं, जलंधर आकाशवाणी सुनते रहते हैं।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया जी। आपको जो पंजाबी कार्यक्रम है वो समझ आते हैं?
2: हाँ आते हैं, हम तो सुनते रहते हैं।
1: पंजाबी गीत अच्छे लगते हैं?
2: जी जी जी, अच्छे लगते हैं।
1: या फिर इसी कार्यक्रम में फोन करते हैं
2: जी? हाँ।
1: गाना कौन सा सुनेंगे आज?
2: प्रेम पुजारी का, वो रंगीला रे।
1: ठीक है जी, शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास के खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, डोमेन अवेयरनेस, लॉजिस्टिक्स नेट

0: वर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगे और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरा होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो में से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इस बीच मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। अधिकारियों ने लोगों से बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही सतर्क रहने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीएनएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स फाजिलगा, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स कसौली, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक इस वेले 11:05 हो गए ने। तुहाड़ा दोस्त गौरव तुहाड़े नाल जुड़ गया जो शाम 5 बजे तक तुहाड़े नाल रहेगा और प्रोग्रामां दा सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। फिलहाल समा हो गया है साढ़े प्रोग्राम धमक जलंधर पैंती दा। यो प्रोग्राम है जिदे विच तुहाडे मैसेज जिहड़े साढ़े कोल पहुँचते ने उहनां दे विच जिहड़ियां फरमाइशां कीतियां जांदियां, जिहड़े गीत संगीत दी ओह चलाया जांदा है। जिन्हां ने भी सवेरे 10 बजे तो लैके 10:30 बजे तक अपनी फरमाइशां साढ़े वट्सएप नंबर 9465536077 इस नंबर पर भेजिया सन, उन्हां सारियां दी फरमाइशां नूं पूरी करन दी कोशिश करांगे। फिलहाल रब दा नां लैके शुरू करदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

जी बिल्कुल, हंसना जरूर चाहिए और मैसेज भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैसेज करोगे तो सानू पता लगेगा कि तुसी साढ़े नाल जुड़े हुए हो, साढ़े गल्लां बातों ते हंस रहे हो और पूरा का पूरा आनंद जड़ा है वो माण रहे हो। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है तुहाड़ा सारिआं दा, अपना धमक जलंधर पैंदी और धमक दूर दूर तक पैनी शुरू हो गई है, क्योंकि मैसेज मैनू आ गया है नवीं दिल्ली तो, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवीं दिल्ली तो साढ़े नाल जुड़ गए ने। जी आया नो जी, सत श्री अकाल जी। बलविंदर सरां और उन्होंने नाल गुणतास, रमनदीप और मनिंदर सिंह, पिंड जिहड़ा है इन्हां दा मोरजड़ सिखां है हनुमानगढ़ ज़िले तो साढ़े नाल जुड़े ने। कहिंदे गीत कोई भी चला दिओ, बस इसे तरह साढ़े नाल जुड़ते रहना। और एक होर मैसेज आया पर उहदे विच उन्होंने फोटो भेजी है। देखो वैसे फोटोआं खिचाण दा शौक तां सारिआं नूं ही हुंदा, मैनू भी बहुत है, पर इस प्रोग्राम दे विच फोटो नहीं चल सकदी क्योंकि रेडियो ते हजे तक फोटो

आ ही नहीं सकती, इदां दी टैक्नोलॉजी नहीं बनी। तो इस करके तुसी सिर्फ अपने मैसेज भेजने हैं, मैसेज दे विच अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, जिहड़े गीतकार का गीत सुनना चाहते हो, जिहड़े गायक का तुसी गीत सुनना चाहते हो, बस उहदा नाम लिख के भेजो, असीं चला देंगे। फोटोआं साढ़े तक पहुँचदियां ही नहीं। ज़िला फाजिलगा पिंड बाजिदपुर और करन वाले ने मैसेज, बलजीत सिंह, बलदेव सिंह, पेंचरा वाला जग्गा सिंह मैंबर और वड़ेंग खेड़ा तो भोला सिंह कहिंदे गीत सुना दिओ, बस साढ़े नाल प्रेम प्यार इदे ही रखना जी, प्रेम प्यार इदे ही रखांगे, बस फोटोआं नहीं भेजनियां तुसीं, साढ़ा ध्यान भंग हो जांदा फोटोआं देख के। प्रोग्राम चल रहा है तमक जलंधर पैंदी बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय टिंगिया नमन अपार कहिंदे ने, आदरणीय प्रसारक जी को नमस्कार, प्लीज़ हमारे गीत को और हमें शामिल कर लीजिए। तुसी दिल दे विच बिल्कुल शामिल हो, जिवें मजनू दे टिल्ले तो कमल बलूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा, गुड़िया माही, मलिक इशिता अरोड़ा ते सारा दा सारा अरोड़ा परिवार साढ़े नाल जुड़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई, दिल्ली तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, उम्मीद है साडा प्रोग्राम उहनां दे दिलां दे विच ठंड पा रहा हो गया, क्योंकि दिल्ली दे विच गर्मी जिहड़ी है अमूमन इहनां दिनां दे विच वध जांदी है। ते आओ फिर अगले गीत वल नूं रुख करिए, क्योंकि हुण सानूं आवाज़ दित्ती है हंस राज हंस होरां ने, कहिंदे प्रोग्राम अगे निकल चला है ते तुसी मेरा गीत नहीं चला रहे, ये इदां नहीं हो सकदा। हंस राज हंस जी दी आवाज़ है और गीत चलान जा रहे हैं, उम्मीद है इस गीत तुहानूं सारिआं नूं बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये गीत है ही इन्ना वधिया। ते आओ फिर सुनिए हंस राज हंस जी दी ये आवाज़, और वैसे हाले सौण दा महीना आया तो नहीं है, पर गर्मी जिन्नी को हो गई है ना, दिल करदा सौण दा महीना पहले ही आ जावे, जिदा हंसराज हंस जी लैके आ रहे हैं।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: ते सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਜੀ ਬੀ ਪਰਾਗ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी।

0: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेय लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते विड़े।

0: दिल्ली है, वहाँ स्कूल्स में तो डांस है, पर कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जिथे एक उत्थे डांस सब्जेक्ट होवे। ये तो असी लकी हैं कि पंजाब च बहुत, अमृतसर च भी हैगी है डिग्री, तो
1: जी
0: बच्चे वो करते ने। फिर उस तो बाद जिदा मैं PhD की है, फिर UGC क्लियर करके सीधे लेक्चरर्स लगते हैं, स्कूल्स टीचर लग जाते हैं बच्चे,
1: जी
0: तो अपने स्टूडियो खोल लेंगे। हर एक तरह का क्लासिकल जो सीखता वो कुछ भी कर सकता, वेस्टर्न भी सीखते हैं बच्चे, ग्रुप डांस है इंडिया के कितने हैं, तो बहुत इस तेज कीता। कोई लोग कॉस्ट्यूम दे फील्ड विच चले जाते हैं,
1: जी
0: कोई लोग थिएटर च चले जाते, BA तक डांस कीता
1: जी
0: थिएटर विच चले जाते हैं,
1: जी
0: क्योंकि एक डांस ऐसा सब्जेक्ट है जिदे च म्यूजिक भी जुड़दा है, थोड़ा एक्टिंग भी जुड़ती है,
1: सिनेमा भी,
0: और फिर
1: स्टेज भी,
0: सिनेमा भी, स्टेज
1: थिएटर
0: भी,
1: भी।
0: हाँ थिएटर भी।
1: जी
0: तो थिएटर है उहदे, चलो एक्टिंग हुंदी, डांस घट हुंदा है ना,
1: जी
0: घट मतलब नहीं हुंदा, वाणी दा तुहानूं आर्ट दिखाना, तो डांस है उहदे विच तुहानूं सारी कलावां करन नूं मिल जांदियां।
1: मतलब कि बहुत ज्यादा इस वे स्कोप है, ते
0: हाँ
1: हर जगह
0: हर
1: स्कोप है।
0: सगो तुसी
1: जी
0: आर्टिस्ट बन सकते हो, तुसी हो दिल्ली जाओ, कथक केंद्र है उत्थे, तुसी ओपनली अपना नाम है थोड़ा प्रे, जितना वो तो जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना ही मिठा होएगा, जिन्ना
1: बिल्कुल
0: रियाज करोगे, ये तो रियाज दे सब्जेक्ट है के,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जिन्ना रियाज करोगे उन्ने निखर दे चलते जाओ।
1: वाह जी वाह, बहुत सोहनी गलबात तुसी कीती है। ते तुहाडी गलबात तो यही सानू एहसास होया है कि जो इंसान दा बिखरिया होया मन है ना, उसनू लयबद्ध
0: लयबद्ध
1: करदा है
0: लयबद्ध,
1: डांस।
0: हाँ। अब लय तो पहला उसका पॉइंट ही लय है,
1: जी
0: जिदे च लय वो डांस कर सकता, जिन्हें च नहीं है उन्होंने थोड़ी मुश्किल होंगी है। तुसी देखो कोई भी काम करते हो, चलते हैं करते हो, कहते घड़ी दी टक टक साड़ी हार्ट बीट चलती है, तो लय ही एक डांस है, वो ही
1: बिल्कुल
0: सुंदर है। लय तो एक ऐसी चीज़ है जो कण कण च विराजमान है, तो थोड़े अंदर भी होएगी, थोड़े डांस करते हो कितना, एक लैच करता एकदम नहीं लैच करता तो कितना देख लेंगे ना, है ना, लोग ऑडियंस नू बिल्कुल
1: जी
0: पता लग जाता कि ये लैच नहीं है, तो रियाज करने वाले को कितना रियाज करना पैंदा तुसी देखो।
1: असीं तां इह देख रहे हैं कि जो महिलावां अलग अलग
0: हाँ
1: फील्ड्स दे विच आईयां ने, चाहे वो अंतरिक्ष विच गईयां ने, चाहे वो साइंटिस्ट ने, या
0: बिल्कुल
1: फिर डॉक्टर्स ने, या फिर कोई भी अजिहा फील्ड जो महिलावां लई नहीं सी, उन्हां दे विचों तुहाडा भी ये फील्ड है, क्योंकि
0: हाँ
1: तुसीं अपना सुपना पूरा कीता है, ते
0: बिल्कुल
1: तुसीं अपने सुपनियां दी उडारी मारी है। ते बहुत चंगा लगा डॉक्टर रंजना जी तुहाडे नाल गलबात करके, पता ही नहीं चलिया कि समां किस तरह निकल गया।
0: बस एक है कि अपना मन सुच्चा रखो, तुम
1: जी
0: सब कुछ मिलता।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी साडे नाल गलबात करन लई, प्रोग्राम चाहुण दे लई।
0: शुक्रिया जी।
1: जी
2: जी सो बहुत ही सोहनी गलबात अज असी सुनी, और मैनू लगता है कि साडियां जिहड़ियां भैणां ने ना, जदों कला दे नाल भी जाके जुड़ जांदियां ने, ते उत्तों उहनां दी मेहनत, तां फिर ओह
0: बिल्कुल
2: रंग जरूर लै के आउंदियां।
1: बिल्कुल सही कहा तुसी। ते इस खूबसूरत गलबात तो बाद जिवें कि इन्हां ने विच डांस की गल कीती सी, नचन गाउण की गल कीती सी, कुछ इसे तरह का गीत भी सुन लिए हुण।
2: जी

0: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਤੇ ਵੇੜੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज

0: आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया, जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। ਸਰੋਤਿਓ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਚੱਲੀਏ ਪਰਿਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ।

जय हिंद फौजी वीरो, तुहाड़ा दोस्त गौरव हाजिर है लै के प्रोग्राम फौजी वीरा लई। एक बारी सारिआं नूं धन्नवाद, जिहड़े भी फौजी वीर या जिहड़े भी देश दे नागरिक देश दे लई देश दे प्रति अपने फर्ज निभा रहे ने, साडे सारिआं दी रक्षा कर रहे ने, उहनां सारिआं नूं जय हिंद और बहुत बहुत धन्नवाद देना बनता है। जिन्ना भी धन्नवाद कर सकीए उन्ना घट है, और फिलहाल साड़ी कोशिश यही है कि तुहाड़े सारिआं दा धन्नवाद असी मनोरंजन दे राहीं करिए। इह प्रोग्राम है जिहदे विच असी खास करके अपने फौजी वीरां दे लई गीत संगीत जिहड़ा है लै के आईदा उहनां दे मन परचावे लई। तो प्रोग्राम जिहड़ा है शुरू करन जा रहे हैं, और प्रोग्राम दी शुरुआत अज करांगे किशोर कुमार दे गाए हुए गीत दे नाल। किशोर कुमार जिन्हां नूं तुसीं सारे जानते हो, ना सिर्फ एक गायक दे तौर पर बल्कि बतौर एक्टर डायरेक्टर और हर फन मौला एक व्यक्तित्व उन्हां दा। जदों भी वह पर्दे दे उपर या पर्दे दे पिछे होंदे सन तां एक बहुत ही वधिया हासे वाला बहुत ही दिल नूं छूण वाला माहौल जिहड़ा है बन जांदा सी। ते फिर उन्हां दे ही गाए इस गीत दे नाल

प्रोग्राम चल रहा है जी फौजी वीरा ली, और अगला जिहड़ा गीत फौजी वीरा नूं असीं सुनाउण जा रहे हैं ना, उस गीत नूं गाया है।

महिंदर कपूर होरां ने, जी हाँ महिंदर कपूर होरां दी आवाज़। और जदों महिंदर कपूर गाते ना तां दिल दे विच किसे कोने दे विच एक पंजाबीयत जिहड़ी है उह जांदी है। तो उन्हां दा गाया ये गीत तुहानूं सुनाउण जा रहे हैं, जिहदे विच उन्हां दे नाल ने आशा भोंसले जी, और फिल्म है राम और श्याम। इस गीत नूं कलमबद्ध कीता है शकील बादुईन होरां ने, और संगीतबद्ध, माफ़ करना, कलमबद्ध शकील होरां ने कीता है और संगीतबद्ध नौशाद होरां ने कीता है। तो आओ फिर सुनिए महेंद्र कपूर ते आशा भोसले दा गाया ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हेलो
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट लिए रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी

0: खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com या newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रहे, ये कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जाएगा।
1: की के है तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया है कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया है, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
2: जी बिल्कुल, ये जिहड़े भी संदेश तुहानूं सुनाए जांदे ने, ये तुहाडे सारयां लई बहुत जरूरी हुंदे ने। इन्हां नूं सुनो ध्यान नाल और इहदे ते अमल करो। फिर हाल अमल करना है तुसीं इस प्रोग्राम ते जिहदा नाम है फौजी वीरां लई। और फौजी वीरो, अगला जिहड़ा तुहानूं गीत सुनाउण जा रहे हैं ना, वह गीत भी जिंदगी दे विच अमल करन वाला ही है, क्योंकि वह गीत है ही इन्ना चंगा, या मैं इन्ना कहां इन्ना सुरीला। और वो क्यों सुरीला? क्योंकि मुहम्मद रफ़ी होरा ने उहदे विच अपनी आवाज़ दित्ती है। और जदों गल मुहम्मद रफ़ी होरा दी आंदी है ना, तां उदों बड़े अदब दे नाल, बड़े इत्मीनान दे नाल साढ़े जिहड़े कन्न ना वो रेडियो दे नाल लग जांदे ने। उन्हां दी आवाज़ है ही इदां दी। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, एक बार फिर शकील होरा ने ही इस गीत नूं लिखिया है और रवि होरा ने इस गीत नूं कंपोज किया है। आवाज़ हर दिल अजीज़ मुहम्मद रफ़ी होरा दी। ते आओ फिर सुनिए ये गीत।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजारा खारजा की मीटिंग की सदारत की। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कनकनी और इन्हें काबिले इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खित्तों में दरख्शा गांवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीजा हज अदा कर रहे हैं और IPL क्वालिफायर 1 में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में ख़त्म हो गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशी मित्सू मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले मुआशरे वाले मुल्क हैं जो खुशहाली के फरोग के खातिर इख्तिरा और तख्लीक को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड के मुल्कों ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है।
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them, while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: मीटिंग के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाहमी राब्तों में दुनिया के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया गया और क्वाड के चार मुल्कों ने खास तौर पर भारत बहरुल काहिल खित्ते से वाबस्ता उमूर पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि बहरी शोबे में इश्तराक में लगातार वसत आई है, जिसमें निगरानी से मुतालिक बेदारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, जेर समंदर केबल, तरबियत, सलाहियत साजी, इंसानी हमदर्दी की इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने की सरगर्मियां शामिल हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने

0: आज़मीन हज मिना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अरफात पहुँचे, जहाँ हज का रुकन आज़म अदा किया जा रहा है। ये आज़मीन वहाँ तौबा व इस्तग़फ़ार में दिन गुजार रहे हैं। आज़मीन हज मस्जिद नबरा में खुतबा हज सुनेंगे और शाम को मुज़दलिफ़ा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज कराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में लू से कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि बहुत से मकामात पर दर्जा हरारत 43 से 47 डिग्री के दरमियान चल रहा है। जुनूब मगरबी मानसून के आज या कल केरलम पहुंचने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे की जानिब से मानसून की आमद के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे IPL के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू खेलने का मौका मिलेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वज़ारा ख़ारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तहकम महफूज और मजबूत तवानाई के मार्केट्स के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा किया। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई कानकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खितों में दरख्शां गाँवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। सऊदी अरब में लाखों आज़मीन आज फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। और IPL क्वालिफायर वन में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: तुसी जुड़े हुए आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल इक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम तुहाडा सारयां दा अपना की नाम फौजी वीराली। जी हाँ, फौजी वीराली है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं और हुण जिहड़ा तुहानू गीत सुनान जा रहे हैं ना, उस गीत नू तुसी सुनिया तो बहुत बारी होना, गुनगुनाया भी बहुत बारी होना और उस गीत दे नाल तुहाडियां यादां भी बहुत जुड़िया होनी है। और जदों भी ये गीत चलता है ना तो तुहाडे जिहड़े पैर ने वह जरूर थिरकदे होने। क्यों थिरकदे होने ने ये जदों तुसी गीत सुनोगे ना वो तुहानू अपने आप ही पता चल जाएगा। मैं गीत चलान जा रहा मुहम्मद रफ़ी का गाया होया और मुहम्मद रफ़ी दे नाल आशा भोंसले की जिहड़ी है जोड़ी है ना, इन्हां ने जदों जदों ऑन स्क्रीन किसी ने अपनी आवाज़ दिती है तो हमेशा ही वो गीत हिट हुए ने। जिहड़ा गीत तुहानू सुनान जा रहा उन्हें लिया गया तीसरी मंजिल फिल्म च 1966 फिल्म आई सी और शमी कपूर की लाजवाब एक्टिंग इस फिल्म दे विच। और गीत संगीत की गल करां तो राहुल देव बर्मन यानी RD बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की कलम, तो मुहम्मद रफ़ी तो आशा भोंसले की आवाज़ का जादू। तो आओ फिर इस जादू नू अपने सिर ते बैठा लईए, यानी सिर चढ़ के बोलने वाला जादू।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों

0: की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
0: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित BSF मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत भरोसेमंद

0: और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। IPL क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा।

0: मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं रंगली धरती, जिदे विच अज तुसी राजकुमार ते उन्हां दे साथियों वालों माता दियां भेंटां दा गुणगान सुनोगे। बस इस छोटे जिहे अंतराल तो बाद
3: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक ਹੁਣ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2: ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਗਾਨ ਇਸ ਭੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ।

प्रोग्राम चल रहा है फिल्म संगीत, पंजाबी फिल्म संगीत। तुहाडा दोस्त गौरव इस प्रोग्राम नूं पेश कर रहा है। अगला जिहड़ा गीत तुहाडे लई लैके आ रहे हां, उहनूं लिया गया फिल्म कली जोटा दे विचों। 2023 दे विच आई है पंजाबी फिल्म, जिहदे विच इस गीत नूं गाया है सतिंदर सरताज ने। ना सिर्फ गाया है बल्कि लिखिया भी उन्होंने ही है, और संगीतबद्ध किया है राजू सिंह होरां ने। और इस गीत दे नाल उन्हां दा रुतबा जिहड़ा है पंजाबी इंडस्ट्री दे विच बहुत उपर हो गया, क्योंकि ये गीत ही रुतबे वाला है।

जी बिल्कुल। जदों कोई दिल दे बहुत नेड़े हुंदा है ना, तां सारा जहान ही उहदे विच सिमट के रह जांदा है। जिदां आकाशवाणी ते उहदे सरोते एक दूजे दे विच सिमटे होए ने और हमेशा ही एक दूजे दे नाल ने। तो फिर अगला ही गीत दी वारी आ गई है। हुण अगला गीत जिहड़ा है ना, वह एक अजिहा गीत जिन्हों तुसी प्यार नाल भी गुनगुनाया है और किसी की याद दे विच भी गुनगुनाया है। हुण तुसी सोच रहे हो कि किहड़े गीत की गल कर रहे हैं। एक गीत है एम्बर वशिष्ठ ते प्रियंका का गाया हुआ, फिल्म जट एंड जूलियट चो लिया गया है गीत। और इस गीत दे पिछे एक कहानी है, जे मैं तुहानू दस दवां कि अंबर वशिष्ठ ने जदों यह गीत गाया सी ना, तां यह गीत एक डमी दे रूप दे विच गाया सी। इस तो पहला कोई उन्हां दा बहुता चर्चित गीत नहीं सी, वह गिटारिस्ट सी और जलंधर दे विच ही पढ़दे सन। तो जदों उन्हां नूं इहदे डमी लई बुलाया गया तां उन्होंने गीत गाया। तो दलजीत दोसांझ नूं उन्हां दा गाया गीत बहुत पसंद आया। वह कहिंदे इन्हां दी आवाज़ दे विच ही रहण दिओ। और इन्हां दे नाल जिहड़े दूसरे सन प्रियंका, वह भी जलंधर तो सन, वह भी एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन ते आरजे सन, ते उन्होंने भी इस गीत दे विच शिरकत की। तो देखो किवें जलंधर बनिया इस गीत दा मुख घर, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी जलंधर च ही होया सी, हुण अज चल भी रहा आकाशवाणी जलंधर ते। आओ सुनते हैं ये गीत।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच गुरु की महिमा बयान की गई है। पार ब्रह्म ते गुरु विच कोई भेद नहीं दस्या गया। सच्चा गुरु समर्थ हुंदा है। उस दे पास ऐसे गुर भाव ऐसे मंत्र हुंदे ने जो ओ पास बैठिया नू प्रदान करता है। उन्हां दे दुखां दी निवृत्ति वहमा परमा तो छुटकारा दिवा के उन्होंने सच्चा ज्ञान बख्शता है। पूरे वैद दी न्याई नाम रूपी औखद बिना किसे भेदभाव दे सबना नू प्रदान करता है। बस उस दी कृपा दे पात्र बनन दी लोड़ है। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा। सरवण करदे हां भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख परमेश्वर निरपाओ है, निरवैर है, जीवां दे भय दा खंडन करदा है, दुखां तों निवृत्ति प्रदान करदा है, भगत वच्छल बन के भगतां दी रख्या करदा है, निराकार है अकाल पुरख प्रभु। उसनू एक खिन भी चेते कीत्या कीते हुए करोड़ां अपराध माफ हो जांदे ने, मिट जांदे ने। ऐसे प्रभु नाल मन वडभागे प्राणियां दा लगदा है। फरमान है, भव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वच्छल निरंकार है, कूट प्राद मिटे खिन पीतर, जा गुरमुख नाम समारे। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: पावखंडन दुख पंजन स्वामी पगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे किन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई बख्शीश सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी कुलदीप सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद पाव खंडन दुख भंजन स्वामी भगत वशल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन भीतर जा गुरमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दूतारे। रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहें दरबारे। सर्ब जियां के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापै रूप न लखियै तेरी कुदरत कौन बिचारे। जल थल महियल रव्या सर्ब थाई अगम रूप गिरतारे। कीरत करें सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे। ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। ए पावन पवित्र शब्द शांति दे पुंज निर्माणता दी मूरत धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी का राग तनासरी अंदर उच्चारण किया होया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंग 670 उपर सुभाए मान है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी 31 रागां विच उच्चारण की गई है। 6 गुरु साहिबान 15 भगत जन 11 पट साहिबान अते 3 गुरसिखां दी बाणी दर्ज है। कुल 31 रागां विचों

भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा आया राम। इस शब्द का गायन कीता सी भाई दिलबाग सिंह, भाई गुलबाग सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz DRM 864 kHz FM ਬੈਂਡ 100.8 MHz ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ FM ਬੈਂਡ 100.9 MHz ਕਸੌਲੀ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त

0: की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां। सारा साल हरा चारा इस बारे जानकारी देणगे डॉक्टर मनप्रीत जैतका। गर्मियां दा सेहत ते असर इस बारे दसन

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ

0: हाँ जी बाल साहब, देखो मौसम जिदा आप सारे जानने कि मौसम का अपना रंग है, अपना ढंग है।
1: जी
0: आप मौसम के लिहाज न चलना है, मौसम ने साडे लिहाज न नहीं चलना।
1: बिल्कुल दुरुस्त गल है जी,
0: और मौसम किसी का लिहाज नहीं करता,
1: नहीं करता जी।
0: चाहे तुम जिन्ने मर्जी अपने आप को ताकतवर बहुत खब्बी खान तुरे फिरो,
1: जी
0: पर जो मौसम की लफड़ा पैंदा है ना, उन्हें नहीं देखना फिर।
1: सही गल
0: तो इस करके मौसम के नाल किसी तरह की जिदा कहने हाँ छेड़छाड़ है ना,
1: जी,
0: या ये कोई ऐसी खेड करनी, वो गलत हो जाती
1: सही
0: है,
1: गल
0: ताकि
1: है,
0: सेहत पर माड़ा असर पाती है।
1: बिल्कुल जी,
0: गर्मियों का साड़ी सेहत पर की असर है, किदा आप बचा करना है, इस विषय के बाबत डॉक्टर गगन होर असम साहब ने गल्लां बातें साझियां कीतियां, आप साझियां करते हैं।
1: सुना दिओ जी।
2: गलबात करांगे डॉक्टर गगन ठाकर जी नाल, जिहड़े कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर दे विच प्रोफेसर ने, और खास करके जो साडा विशा डॉक्टर साहब आपां गलबात करन जा रहे हैं, जिस ते कि गर्मियां दा मौसम है, गर्मी लगन दे की प्रभाव पैंदे साडे शरीर ते, या लू लग जांदी हैगी है, की कारण हुंदे ने, किस तरीके नाल बचा कर सकते हैं, की सावधानी रखिए, और इस मौसम में आपां नूं किस तरीके दे नाल जिहड़ा चाल चलन साडा होना चाहिए है। थोड़ी जी गल आपां डॉक्टर साहब ये करते हैं पहला कि आयुर्वेद के हिसाब नाल गर्मी का मौसम जिहड़ा है वह कदों तो मन्निया जांदा है।
1: सब तो पहला सारे श्रोताओं नूं मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल। आयुर्वेद विच सारे साल नूं असी छे रुतां विच वंड दिते हैं। पहला सीज़न जनवरी विच जदों स्टार्ट हुंदा उहनूं असी कहिंदे शिशिर, उहदे बाद आउंदी है बसंत रितु, ते उहदे बाद आउंदी है ग्रीष्म जिहनूं आपां गर्मी कहिंदे हां। ते इह जिहड़ा सीज़न, जिहड़ा छे सीज़न डिवाइड किए गए, इह दो दो महीने दे हुंदे हैं। ते जदों गर्मी दा नंबर आउंदा और तीजे सीरीज़ ते आंदा, तीजे साडा वर्ग विच आंदा, ते ओह स्टार्ट हुंदी है 15 मई तो लेकर 15 जुलाई तक रहिंदी है। मतलब जे जिहड़ा 2 महीने दा टाइम है, 15 मई तो लेकर 15 जुलाई तक, इह गर्मी दी रुत्त दा टाइम है, असली गर्मी दी रुत्त इही हुंदी है।
2: ठीक है जी।
1: ते इहदे 5-7 दिन पहलां ही गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर दिंदी है।
2: ते कई बार सानूं लगदा कि हर बार ही गर्मी वध रही हैगी है, वातावरण दे विच उहदे कई कारण हैगे है। कि डॉक्टर साहब कि आपां जो मानते हैं कि कई प्रबंध असीं कीते हुए है घरां च भी बाहर भी, पर साडे शरीर नूं भी गर्मी चाहीदी है।
1: बिल्कुल, देखो साडी जिहड़ी, क्योंकि साडा देश इहो जिहा देश है जिथे आपां सारी रितुआं देख सकते हैं, जिथे पूरी ठंड पैंदी है, सर्दी रहिंदी है पूरे साल विच, उहनां दा जिहड़ा शरीर है उह वक्खरे तरीके नाल उहनूं नूं बीमारियां दे जांदा। साडे शरीर विच की हुंदा, जदों साडे शरीर विच जदों असीं ठंड दा ही सारे साल फेस करदे हां, उहनूं सहदे रहिंदे, की हुंदा सारा शरीर दा बॉडी चेंज हो जांदा। ते आपा अपने आप नूं बड़ा लक्की समझिए कि आपा इस देश विच पैदा हुए हैं जिथे गर्मी भी आती है ते सर्दी भी आती है। गर्मियों नाल की हुंदा है, गर्मियां साड़ा शरीर दा जिहड़ा पसीना है वह शरीर दा पसीना बाहर निकलता है। जे आपा कंपेयर करिए उस कंट्री दे नाल, उस देश दे नाल जिथे ठंड पैंदी है ज़्यादा, गर्मी रुत दी रुत आती नहीं है, उन्हां नूं पसीने दा कोई पता नहीं हुंदा। ते पसीना साडे शरीर दा शोधन करदा, शुद्धि करदा, साफ करदा। ते जिस तरीके नाल सानू पसीना आऊगा, जिन्ना पसीना आऊगा उस दे नाल साडा किडनी दा लोड घट हुंदा, किडनी नूं घट काम करना पैंदा, फेफड़िया नूं काम बहुत घट करना पैंदा, ते साडा शरीर हल्का हो जांदा, साफ रहिंदा, अंदरूनी तौर ते साफ हो जांदा पसीने दे नाल।
2: ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब अपना देखिए भी इस मौसम के केड़ी-केड़ियां समस्यावां जिहड़ियां आपां नूं सेहत पक्षों आ सकदियां ने।
1: देखो जिस तरीके नाल टैंपरेचर तापमान हौली हौली वधदा चला जांदा है तो शरीर विच कुछ चेंजिस आ जांदे हैं। जिहड़े हुंदे जिन्हां दी उम्र नौजवान वाले उम्र वाली हुंदी है, 20 तो लेके 40 साल तक, 45 साल तक, वह इस नूं बहुत हद तक बर्दाश्त कर लैंदे हैं। पर बच्चे ते 60 साल दे उपर जड़े लोकी हुंदी है उन्हां नूं गर्मी बर्दाश्त नहीं हुंदी, क्योंकि उहदे नाल की हुंदा बॉडी दा जड़ा टैंपरेचर वह भी डगमगा जांदा है, ते ब्लड प्रेशर घट हो जांदा है, सिर दर्द दी तकलीफ आम शुरू हो जांदी है, कईयां नूं माइग्रेन दी कंप्लेंट स्टार्ट हो जांदी है, बच्चे नूं नकसीर दी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जांदी है, वह समस्या पैदा हो जांदी है। तो भुख भी साड़ी इस सीज़न में बहुत घट जाती है, सानू कुछ खाने का मन नहीं करता। जे

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र।

जी हाँ, जिंदगी हसीन है। जेकर जिंदगी दे नाल नाल चलते रहांगे तां जिंदगी हसीन लगेगी, जिंदगी खूबसूरत लगेगी। ते जेकर किते असी रुक गए, जिंदगी अगे निकल गई, तां फिर तां जिंदगी अजाब बन जाती है। फिर जिंदगी तो बुरी होर कोई चीज़ नहीं। इसलिए जेकर इसनू हसीन बनाना है तां इस दे नाल नाल चलना पएगा, रुकना नहीं है, चलते चले जाना है। ते आओ जी चलते हैं इस खूबसूरत गीत वल। फिल्म सोनी मईवाल तो आओ सुनते हैं।

0: तो सुन रहे सी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 8:45 होने जा रहे ने। हुण तो कुछ ही पलों बाद तुसीं सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 ते 9:15 प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तों।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव

0: समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र

शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Sai Ramuchtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stalks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes.

0: मैं बॉक्सिंग करने लगी सी, उदों तो ये इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा सी, ट्रेनिंग से सब तो अगे होंगी सी, छुट्टी कोई नहीं मारती सी, चाहे फेस्टिवल हो या कुछ भी। उस तो बाद फिर पहली जूनियर नैशनल ज़्यादा सिल्वर मैडल आया, सिल्वर मैडल तो बाद फिर हौली हौली प्रोग्रेस करते करते इंटरनेशनल मैडल, नैशनल चैंपियन बनी, खेलो इंडिया चैंपियन बनी, रिसेंटली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन बनी, एंड शी स्टिल कंटिन्यूज टू अचीव हाईएस्ट सक्सेस। हार्डवर्क उन्ना ही जारी है, पहले नालों ज्यादा ही कर रही है।
1: खेड संसार प्रोग्राम च आओ कृषा वर्मा नू मिलिए ते जानिए उदे जीवन दे संघर्ष ते उदे बॉक्सिंग करियर बारे।
2: आम तौर पर ना समाज में विचरदियां साडा कोई लड़ाई झगड़ा होवे ते साडी समाज में बेइज्जती हुंदी है, पुलिस च साडे खिलाफ परचा हो जांदा है, पर खेड संसार प्रोग्राम च साडे नाल अज जिहड़ी शख्सियत है वह लड़ाई करती है, नित लड़ाई करती है, पर इस लड़ाई करन दे बावजूद उन्हूं समाज में शोभा मिलती है ते उन्हूं तमगे मिलते हैं। खेड संसार प्रोग्राम च अज साडे नाल बॉक्सर कृषा वर्मा है जो कि अंतरराष्ट्री पद्धर की बॉक्सर है, और अज के प्रोग्राम च असीं इहदी खेड यात्रा की इहदी जीवन की गलबात करांगे। कृषा, साडे प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच सर।
2: तो आम तौर पर जिहड़ियां लड़कियां हुंदियां ने कृषा, वह जां तां खो खो दी ग्राउंड च जांदियां ने या बैडमिंटन के कोर्ट चलिया जांदियां ने, तुसीं बॉक्सिंग रिंग च कितना पहुँच गए?
3: मतलब शुरू तो मेरा कुछ इंटरस्ट नहीं सीगा इहदा, बॉक्सिंग बारे मैनू कुछ नॉलेज नहीं सी, बट मेरे फादर नू सी थोड़ा बॉक्सिंग नाल
2: जी जी,
3: ते उन्होंने मैनू दसिया कि उन्हों का पास्ट दे विच बॉक्सिंग करना चाहते सी, बट उस टाइम फैसिलिटीज एंड कोचिज नहीं सीगे तो नहीं कर पाए। फिर जो उन्होंने पता चलिया साडे शहर समाने विच मतलब कोच है वधिया बॉक्सिंग दे, तो असीं उन्हां नू मिलन गए, तो उत्थे दा माहौल देख के मैनू बहुत वधिया लग्या, तो मैनू इदां खुद नूं होया कि मैं बॉक्सिंग करां शुरू पापा करके। मतलब बेसिकली मेन सी कि पापा दा सपना पूरा करना है मैंने।
2: अच्छा, तुहानूं सच्ची मुच्ची लगा सी कि मैं बॉक्सिंग शुरू करा?
3: हाँ। कि
2: किते मन विच ये आ रहा सी वी पापा जे तुसीं बॉक्सिंग नहीं कर सके ते मैनूं क्यों रिंग च धक्का दे रहे हो?
3: नहीं नहीं, मैनूं जेन्युइनली फील होया उत्थे दा एटमोस्फेयर देख के कि मैनूं बॉक्सिंग करनी चाहीदी है।
2: अच्छा अच्छा, किन्ने साल दी सी जदों पहली बार तुसीं बॉक्सिंग रिंग च गए?
3: मैं 10 साल दी सीगी।
2: अच्छा,
3: हाँ जी।
2: कृषा, आपां कुछ भी करदे आ स्कूल च जदों जांदे आ, जिहड़े तां स्टूडेंट्स ने उहनां नाल ते आम तौर ते सारे इक्को जिहा व्यवहार करदे ने, पर जिहड़ा कोई स्पोर्ट्स गर्ल या खेड च हुंदा ना बच्चा, उहदे नाल व्यवहार वखरा जिहा हुंदा। ते तुसीं बॉक्सर सी ते क्लास विच स्कूल विच तुहाडे नाल जिहड़े तुहाडे कलीग सी उह किद्दां बिहेव करदे सी?
3: सारे बहुत प्राउड फील करते सी एक्चुअली, एक ता ते डरदे भी बहुत सीगे सारे जाने।
2: अच्छा।
3: मतलब मुंडे तो बहुत दूर ही रहंदे सीगे।
2: अच्छा, कुड़ी ने कसुन मार।
3: हाँ जी, कि मतलब गर्ल्स गैंग सीगी एक तरह नाल, गर्ल्स सारियां मेरे पिछे पिछे रहंदियां सीगियां।
2: अच्छा।
3: ते मुंडे बहुत डरदे सीगे कि इहनू नहीं छेड़ना, पंगा नहीं लेना या लड़ाई नहीं करनी।
2: अच्छा, ये दसो कि फिर मेहनत का सिलसिला किदां शुरू होया? पहलां तां तुसीं उत्थे जाके माहौल देखिया, तुहानूं चंगा लगा और तुहानूं ये लगा कि तुसीं बॉक्सिंग कर सकदे हो, फिर उस तो बाद किस रूटीन नाल तुसी प्रैक्टिस करनी शुरू की?
3: जदों बॉक्सिंग ज्वाइन की तो पहला तो इन्नी कैजुअली की सी, कुछ सीरीयस नहीं की सी।
2: अच्छा।
3: बट जदों हौली हौली एकदम इंटरस्ट वधन लग्या, फिर सुबह शाम ट्रेनिंग शुरू हो गई, मॉर्निंग 5 बजे ट्रेनिंग होना, 2 सैशन उत्थे लगाने, सुबह 5 to 6 सैशन, फिर 7 बजे स्कूल हुंदा सी, आके 15 मिनट विच तैयार होके स्कूल जाना, स्कूल तो आना, अद्धा घंटा रेस्ट करना, शाम नू फिर 4:30 बजे ट्रेनिंग ते जाना, फिर 7 बजे ट्रेनिंग तो छुट्टी होने तो बाद ट्यूशन ते जाना। मतलब
2: अच्छा।
3: बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड सीगा स्टार्टिंग दे साल दे विच, ता जदों कुछ हले मेडल नहीं सी, अचीवमेंट नहीं सी, ता वो स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत सीगा।
2: कृषा, 10-11 साल दी बच्ची, 5 बजे दिन शुरू होवे, रात 8 बजे खत्म होवे, विचों कोई रेस्ट करन दा टाइम ना मिले, तुसी अकदे नहीं सी और इह लगदा नहीं सी भी किहड़े पंगे च पै गए?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, उस टाइम बिल्कुल फील नहीं हुंदा सी, सगों मज़ा आंदा सीगा कि थोड़ा दिन अच्छा जा रहा है। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सीगा इदा सी कि नहीं हुन बॉक्सिंग कीती है तो करनी ही है
2: जी। अच्छा, समाणा च जिहड़ियां तुहाडियां कलीग बॉक्सर सी उहनां दे नाल तुहानूं किद्दां दा कंपीटीशन मिलदा सी, जोर करन नूं किद्दां दा लगदा सी तां कि तुसीं अग्गे जाके अच्छा परफॉर्म कर सको?
3: काफ़ी सीनियर प्लेयर सीगे साडे उत्थे, तां उहनां नूं देख के मोटिवेशन मिलदा सी कि बॉक्सिंग करिए, और जिहड़े मेरे नाल दे सी मतलब एज ग्रुप्स दे उह वी बहुत अच्छे सीगे, तां बहुत अच्छा लगदा सीगा कि हाँ अच्छा कॉम्पीटिशन हुंदा सी, अच्छी फाइट्स हुंदियां सीगियां। एंड बेसिकली सिमरनजीत जिहड़े बॉक्सर है ओलंपियन, वह साडे ही ग्राउंड च ट्रेनिंग करके गए सीगे।
2: अच्छा अच्छा, सिमरनजीत होरां दे नाल इन्नी छोटी उम्र च उहनां दी संगत करनी, कंपनी करनी, उन्हां नूं प्रैक्टिस करदिआं वेखणा, उन्हां दे नाल तुसीं बॉक्सिंग भी डिस्कस करदे सी, और इन्हें इस चीज़ ने किन्नी क मदद कीती तुहाडी?
3: उस टाइम वैसे इन्हें कुछ पता नहीं सी, बच्चे सीगे, बट फिर भी हुण जाके रिलाइज हुंदा है कि बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया सी उन्हां नूं देख देख के, है ना, कि असीं भी इदां करना है कुछ।

0: नॉलेज पता चलती है अगे क्या क्या कॉम्पीटिशन्स ने, काफ़ी कुछ सीखने को मिले उन्हें।
1: अच्छा कृषा, बॉक्सिंग रिंग च असीं अभ्यास करते हैं, माहौल वधिया हुंदा है, सारे दोस्ताना हुंदे ने, तुसीं हसदे खेडदे ये प्रैक्टिस करते जाते हो, पर जदों तुसीं मुकाबले च उतरते हो ना उदों दिल दीआं धड़कणां भी तेज़ हुंदीआं, उदों इह वी नहीं पता हुंदा भी आने वाला टाइम किदां दा होएगा, तुसीं जितोगे कि हारोगे। सो अपने मुकाबलियां दा तजर्बा दसो कि पहली बार जदों बॉक्सिंग कॉम्पीटिशन तुसीं लड़ने शुरू किए प्रैक्टिस तो बाद छोटी उम्र च, उदों तुहाडी मानसिकता किदां दी सी?
0: उस टाइम मतलब फर्स्ट कॉम्पीटिशन मैं डिस्ट्रिक्ट खेली सी 2018 दे विच, ते मैं गोल्ड आया सी मेरा डिस्ट्रिक्ट चो, और इधर आरएससी फाइट कीती सी मैं।
1: अच्छा। क्यों
0: कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट सीगा कि इन्नी ट्रेनिंग कीती है आराम नाल मार लांगी, और जदों कोच नाल एडे सपोर्टिव होन फिर होर भी अच्छा लगता है करन नू। दैन फिर मैं स्टेट चैंपियनशिप खेलन गई सी, उत्थे मैं थोड़ी नर्वस हो गई सी क्योंकि मेरी हाइट छोटी सी ते मेरी ओपोनेंट दी लंबी सीगी, तब मैं उन्हों देख के नर्वस हो गई, इस करके मैं फाइट हार गई।
1: अच्छा।
0: बट फिर उस तो बाद मैंने रियलाइज होया कि कृषा ऐदा सोचेंगी तो अगे काम नहीं बनना। देन फिर मैंने उसके अगेंस्ट स्टार्ट की ट्रेनिंग कि अगर लंबी हाइट वाला बॉक्सर आवे तो किदा खेलना है।
1: अच्छा, सानू ये जरा डिटेल्स दसो कि लंबी बॉक्सर आवे तो उसके लिए तुसी किदा अपना अभ्यास किया, की चेंजेस कीतियां टेक्निक विच, किस तरीके नाल प्रैक्टिस चेंज कीती है अपनी?
0: उस दे विच जिद्दां थोड़ा मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड लेके आनी पैंदी है, डोज देना पैंदा है, फेंट करना पैंदा, मतलब चखमा दे के बॉक्सर नू मारना, और फिर उन्हों रस्सियां दे विच लेके जाना कि रस्सियां च उन्हों निकलन दी जगह नहीं मिलेगी, तो उत्थे आपां काफ़ी पंचेस दे अटैक कर सकते हैं, तो उत्थे आपां नू स्कोर मिलता है। तो बेसिकली उपर नीचे खेलना क्योंकि टारगेट एरिया फेस एंड पेट तक हुंदा अपना, तो उपर नीचे मारना, तो इस दे नाल काफ़ी हैल्प मिली मैनू।
1: अच्छा, जदों आपां कोई अपनी टेक्निक चेंज करते हैं ना तो सानू अपना कंफर्ट जोन भी छड्डना पैंदा, जो असी कर रहे हुन्ने आ उहदे तों वक्खरा सानू करना हुंदा। सो इह जिहड़ी तुसीं टेक्निक चेंज कीती इहदे च तुहानूं कोई समस्या आई, इहदे च मुश्किल हुई?
0: हाँ जी, शुरू च तां हुई सीगी क्योंकि जदों मैं मारन जाना उपर नीचे तो मेरे फेस से भी पंचेस लगते से, बट हौली हौली प्रैक्टिस के नाल मैनू समझ आया कि इहनूं डिफेंस किवें करना है, ये तो बचना किवें है और किदां अटैक करना है, तो बट हुण अच्छी तरह आंदा है किदां खेलना किदां।
1: अच्छा, टेक्निक तुसी चेंज कीती, फिर अगले साल नैशनल च गए थे, उहदे च फिर परफॉर्मेंस किदां रही?
0: फिर उस मैं फर्स्ट नैशनल खेली, उस मेरा सिल्वर मेडल आया सीगा।
1: ये किहड़ा एज ग्रुप सी?
0: अंडर 17 सी,
1: अंडर
0: जूनियर कॉम्पीटिशन।
1: अच्छा ठीक है, उहदे च तुसी पंजाब वल्लों पंजाब दी प्रतिनिधता कीती?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी, उहदे च मुकाबले किदां रहे?
0: उस च एक तो मेरा सब तो पहला मेडल सीगा है ना, और काफ़ी अच्छे प्लेयर सीगे, मेरी जिद नाल फस्ट फाइट सीगी वो खुद एक नैशनल प्लेयर सीगी, और
1: अच्छा।
0: मैनू मतलब मेरे पापा नू पता चल गया सी कि वो नैशनल प्लेयर है, और पापा ने मैनू दस्या नहीं कि वो नैशनल, पापा बोले कि कोई गल नहीं सिंपल है तो अच्छा खेलना है।
1: अच्छा।
0: और मैं खेली एंड मैंने 5-0 चो आउट दी, तो मैं
1: अच्छा।
0: बहुत खुशी मिली। दैन इदा अगे अगे मेरी 3 फाइट हो गई,
1: अच्छा।
0: मैं फाइनल्स पहुँच गई, फाइनल्स दे विच मैं फस्ट राउंड जीत गई, सैकेंड राउंड मेरे राइट पंच ते राइट एल्बो ते इंजुरी हो गई सीगी,
1: अच्छा।
0: यू सी एल टीयर हो गया सीगा, ते उस करके मैं वो फाइट लॉस कर गई, बट बाद च मैनू कोचिज ने कहा कैंप च कि तू बहुत अच्छा कर सकती हैं, और दैन फिर मैनू होर ज़्यादा होया कि अगर मैनू इंडिया कैंप के कोचिज ने बोलिया कि तू अच्छा कर सकती हैं, तेरे च काबिलियत है, तो फिर मैंने होर मेहनत की, फिर उस तो बाद मैं इंटरनेशनल गई, एशियन सब तो पहला एशियन सब जूनियर चैंपियनशिप खेलन गई, उत्थे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, उज़्बेकिस्तान दे नाल मेरी फाइट सी।
1: अच्छा।
0: हाँ जी,
1: कृषा साडा जिहड़ा भारत है इहदे च इह कहा जांदा है कि लड़कियां दा ना बॉक्सिंग दा टैलेंट बहुत अच्छा है, सो अंडर 17 जदों तुसीं नैशनल गए सी उदों टैलेंट बहुत जबरदस्त होएगा, सो तुहानूं लगा कि तुहाडे तों बेहतर ने बॉक्सर जां तुहानूं होर मेहनत करन दी जरूरत है इस मुकाबले च भाग लैंदे?
0: नहीं, मैनू मैं ही बेस्ट लगती सी, अगर आप अपने आप बेस्ट समझांगे ता ही आप जीत पावांगे, मतलब सेल्फ बिलीव सीगा बहुत ज़्यादा कि मैं चैंपियन बनूंगी, फर्स्ट टाइम नैशनल खेल रही सी बट फिर भी मैनू ऐदा सी कि नहीं आई वॉन्ट टू बिकम अ चैंपियन
1: जी। अच्छा, नैशनल चो तुसी गोल्ड मैडल हासिल किया, मैडल्स तुहानू मिलने शुरू हो गए, और ये फिर मुँह नू खून भी लग जाता है, आदत पै जाती है कि मैं हर मुकाबले च मैडल लेना ही लेना। सो ये दसो कि पहला तुहाडा अंतरराष्ट्रीय पद्धर का जिहड़ा टूर सी वो किहड़ा सी और उहदे च प्रदर्शन किदां दा रहा सी?
0: मेरा एशियन जूनियर चैंपियनशिप सी, फस्ट इंटरनेशनल, और उत्थे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया सी।
1: अच्छा।
0: हाँ जी, मेरी फाइट उज़्बेकिस्तान दे नाल सीगी जो पिछले 3 सालों तो चैंपियन सीगी।
1: अच्छा।
0: एशियन चैंपियन दे विच सब जूनियर तो लेके जूनियर तक वो चैंपियन सीगी, गोल्ड।
1: अच्छा।
0: मेडलिस्ट।
1: अच्छा।
0: और मैंने बहुत अच्छी फाइट दी, 3-2 दे विच फाइट सी साड़ी।
1: अच्छा।
0: एक्चुअली थोड़ा फेवरिज्म भी हुंदा है अजकल स्पोर्ट्स दे विच, थोनू पता ही है,

0: हो जाती है क्योंकि फाउल तो कर नहीं सकते, देन अगर मार रहे हैं तो थोड़े बहुत लगनगे भी, बट इदा कि मिसिंग मोमेंट्स करिए ना, मिसिंग दे नाल इदा पंच काफ़ी मिस हो जाते हैं तो नहीं लगते, मेन होंगे कि मिसिंग आनी चाहिए है।
1: जी
0: हाँ जी,
1: जिदा तुम्हें दसिया कि उत्थे प्रैक्टिस थोड़ी बहुत वधिया हुंदी है ना, फुटवर्क की हर तरह की, पर ये भी बड़ा जरूरी है कि तुहाडा कॉम्पीटिटिव जिहड़ा कॉम्पीटिटर है वो बहुत अच्छा होवे, जिहदे नाल तुसीं बाउट्स करो, जिस तो तुहानूं ये पता लग सके कि किन्नी इंप्रूवमेंट हुई है या किन्ने तुसीं मजबूत होए हो। सो कॉम्पीटिटर्स की कोई समस्या कैंप विच ते नहीं आउंदी?
0: नहीं उत्थे नहीं आती एक्चुअली, इदा है कि जिवें हुण मैं मुंडिया दे नाल ज़्यादा ट्रेनिंग करती हाँ
1: अच्छा
0: क्योंकि उन्हां नाल करांगी तां कुड़ियां नाल बेस्ट खेल पावांगी,
1: जी
0: मुंडे काफ़ी अच्छा करते हैं जिवें गर्ल्स नाल, उन्हां नूं काफ़ी टेक्निक्स का पता हुंदा तां सीनियर मुंडिया नाल करना उहदे नाल साडी डिवेलपमेंट ज़्यादा हुंदी।
1: जी ते कृषा ये लिए मुकाबलों च हिस्सा लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो कॉम्पीटिशन्स भी तुहानू मिलते रहेंगे ने डोमेस्टिक पद्धर ते, जिदे तो तुहानू अपनी परफॉर्मेंस का पता लगता रहे?
0: हाँ जी, काफ़ी अजकल तो बहुत कंपटीशन हो गया लास्ट।

0: सरगम दा अगला नगमा फिल्म गोरा और काला तो आवाज़ा मुकेश ते लता मंगेशकर दियाँ, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दी।
1: धीरे

0: प्रोग्राम सरगम च अगला गीत पेश है फिल्म तीसरी मंजिल तो आवाज़ मोहम्मद रफ़ी दी गीत दे बोल मजरू सुल्तानपुरी दे ते संगीत आर डी परमंदा
1: देख रही हैं कोई खास बात है पीछे
2: पीछे आप हैं खास बात नहीं
1: यूं ही देखती रहीं आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे
2: यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा
1: रास्ता देखने वाला जो है पीछे पीछे
2: और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन
1: गिरने की बात कैसी थामने वाला भी तो है पीछे पीछे
2: अच्छा अब आइए साथ साथ चलें
1: जी नहीं हमारी यही जगह है पीछे पीछे
2: पीछे पीछे पीछे पीछे दीवाने तो नहीं हो गए आप
3: दीवाना मुझसे नहीं

0: प्रोग्राम सरगम दा आखरी नगमा फिल्म इश्क पर जोर नहीं तो आवाज़ा लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफ़ी दियाँ, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा।
1: मैं जाऊँ?
2: अपने दिल से पूछो।
1: दिल?

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवास और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने

0: ना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. However, since these drones eventually land on Indian territories, we must remain highly vigilant about those who may use the materials carried by them for anti-national activities. Effective neutralization will require strong coordination with civil authorities and district police, along with prompt and result-oriented action at every level.
1: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post,

0: बिल्कुल जी, चीटी रोड से दुहाइयाँ पावे नहीं यार था ट्रक भरी गीता जगह कुलदीप मालक साहब की आवाज़ में प्रोग्राम चल रहा जी। सुगात मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वे थोड़े बनया हुआ जी, तो अगले दोस्त भी आ गए ने। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात।
1: श्री गुरु रविदास नगर मनोर तो फिर चंगा रसकनिया जी।
0: हाँ जी रसकनिया साहब, की हाल चाल है जी थोड़े?
1: बहुत वधिया जी, तुसीं सुणाओ
0: जी। साडे वी बहुत
1: बच्चा
0: बिल्कुल जी, गर्मी पूरी है इस वेले। सो तुसीं सुणाओ फरीदकोट दे की हाल चाल है?
1: बहुत वधिया जी,
0: चलो
1: गर्मी है तो बहुत है, पर मैं दोस्तों नूं सलाह दूंगा नींबू पानी पीना चाहिए है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: हाँ जी, ठंडे ठुंडे से तो कुछ नहीं रखे,
0: वो तो है ही जी।
1: देसी फार्मूला जी, कच्ची लस्सी पी लो। हाँ जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। सही गल है जी, बिल्कुल सही गल है वाकई, क्योंकि शरीर का जो तापमान है उसको घट रखना साड़ी इस वेले वो बन जाती है एक जरूरत बन जाती है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तापमान है तो वो करके सारे सिर दर्द बुखार तो अखा दे जलन वगैरह जी होंगी।
1: वरना कोई काम हो फिर ही करो, बाहर निकलो इधर ना निकलो।
0: बिल्कुल सही गल है जी। तो किहड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो फिर अजी?
1: भगवान का सुना दो छला इंडिया तो आए।
0: बिल्कुल ठीक है जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़ी फरमाइश मैं जरूर हमने पूरी कर लूँगा जी। जी थैंक यू जी। सो बिल्कुल दोस्तों, कुछ मैसेजेस भी नाल नाल सी शामिल करते रहना क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस लगातार साढ़े को आ रहे हैं जी। अगला मैसेज साढ़े को पहुँचा है मजनू दा टीला तो भेजा है कमल पलूजा जी ने, इन्होंने नाम ने जी मधु पलूजा, सागर पलूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुड़िया माही मलिक ते इशिता अरोड़ा। तो इस नाल ही एक मैसेज हो रहा है जी, मैसेज आया है साढ़े को साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो भेजा है गुरमीत सिंह मीता जी ने। तो आओ जी फिर अगला गीत सुनते हैं बब्बू मान साहब की आवाज़ में।

0: बहुत
1: हेलो।
0: स्वागत है प्रोग्राम स्वागत
1: हाँ
0: है
1: जी, नमस्कार जी।
0: जी। कौन गल कर रहे हो ते कितों गल कर रहे हो?
1: मैं जनक राज जी, बड़ा बरोड़ गुरदासपुर से बोल रहे हैं
0: हाँ जी जनक राज जी, की हाल चाल है थोड़े?
1: जी। बहुत बोल रही है आपकी कृपा जी।
0: चलो वधिया, कृपा होनी
1: जी
0: चाहिए है।
1: कौन?
0: गुरदासपुर वालों दी कॉल्स आनी शुरू हो गई, मैंने थोड़े तो अगे अगे भी गुरदासपुर वालों की कॉल ही आई सी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अजय
0: तो हो सुनाओ गुरदासपुर का की हाल
1: प्यार
0: चाल?
1: बहुत है जी, तो जलंधर आया।
0: बहुत शुक्रिया जी। ते गुरदासपुर
1: ठीक
0: दे
1: है
0: की
1: जी।
0: हाल चाल ने, मौसम किवें उत्थे?
1: हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी।
0: मौसम इधर
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: गुरदासपुर भी गर्मी हुंदी
1: एक
0: पूरी के
1: गर्मी
0: थोड़ा
1: तो पहाड़ी,
0: बहुत?
1: एक लबड़े हवा दे। हाँ
0: बिल्कुल नहीं, ये
1: जी,
0: जिवें
1: हाँ जी,
0: थोड़ा पहाड़ी इलाके दे नेड़े पैंदा कि दूर ही हुंदा थोड़ा? गुरदासपुर जेड़ा है दूर है उत्थों पहाड़ी इलाके तो कि नेड़े?
1: नहीं दूर है जी, हाँ जी दूर है जी।
0: दूर
1: पठानकोट
0: ही।
1: तो, गुरदासपुर तो पठानकोट 40 किलोमीटर है जी।
0: अच्छा, इहदा मतलब
1: हाँ
0: फिर
1: जी, हाँ
0: गर्मी है
1: जी,
0: उत्थे पूरी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: केड़े गीत दी फरमाइश लिखे हो अज?
1: जी लाल चल जमला जट जी का, जिन्हें खींची ना कमाई उन्हें रज की खाना। हाँ
0: क्या बात है, बिल्कुल सही गल है जी। वाकई जेकर
1: जी,
0: कमाई नहीं की तो कहते भी बहुत ही देर किसी को मंग के जा उतना नहीं खादा जाता। सो आओ जी इस
1: हाँ
0: गीत
1: जी,
0: एंजॉय करते हैं। तो कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया जी।
1: बहुत बहुत थैंक यू साहब जी,
0: थैंक यू
1: बहुत
0: जी,
1: बहुत
0: थैंक यू,
1: मेहरबानी जी।
0: थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेजेस वाले पासे भी आप नज़र मार लेनी, क्योंकि दोस्तों ने उन्हें नाराज़ उधर भी नहीं करना। देखते हैं कि दोस्तों ने मैसेज आए हैं जी। सो मैसेज पहुँचा है जी साढ़े को, आज़ाद नगर हरिद्वार उत्तराखंड तो भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी साहब ने, इन्होंने नाल जी गुलाम साबिर राही ते महराज जहाँ। अगला मैसेज पहुँचा है जी साढ़े को, पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो भेजा हरजिंदर शिंदा जी ने, इन्होंने नाल जसवीर जसी सीता और गीता। एक मैसेज होर पहुँचा है जी, इस मैसेज को देखते हैं आप किन्होंने भेजा सानू। सो ये मैसेज आया जी साढ़े को बठिंडा तो रविंदर सिंह जी वालों, इन्हों के नाल है जी गगनदीप कौर, जसमीन कौर, कुरलीन कौर ते शिंदरपाल ते। सत श्री अकाल कहते हैं जी साढ़े वालों भी, थोड़ा बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। सो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जहा गीत लाल चंद जमुना चर्ची की आवाज़ के।

व्हाट्सएप नंबर है 94655-3607, यानी कि 9465-3607। और इस नंबर के ऊपर लगातार दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं जी। और अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है कनेरा मोहल्ला पटियाला तो भेजा है मुकेश बत्ता जी ने। इन्हों के नाल ने जी नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। सो कंवर गरेवाल साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की है, तो फिर आओ जी इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं इस प्यारे जे गीत के नाल।

0: तेनू लख एक सुनावा
1: सुना।
0: तेनू दफ्तर हुणे पहुंचावा
1: सच्ची
0: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई तेनू लख एक सुनाना ते तेनू ते तेनू

0: बिल्कुल जी, एक तेरे फाड़ काले एक तेरे नए नशीले गीतों जगह महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ सुनी तो प्रोग्राम चल रहा जी। सुगात ते दोस्तों दी कॉल्स भी लगातार आ रही हैं, अगले दोस्त भी आ गए ने जी। हेलो
1: जी, नमस्कार तरुण जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात विच।
1: मेहरबानी जी।
0: जी कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: हाँ जी
0: जी, कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: भूषण कटारिया मलोट तो बोल रहा जी।
0: हाँ जी कटारिया साहब, की हाल चाल ने जी थोड़े?
1: ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
0: ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਗੀਤ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਈਏ?
1: ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਮੋਠਾ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਤੇ ਲਵਾਲਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
1: ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।

हौ वारी वन्या कोली वन्या, तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया, जिन प्रम पर्दा खोला राम। ए कथन उस अकाल पुरख प्रभु तो वारे बलहारे जान दी बात करदा है। अकाल पुरख परमेश्वर बहुत

हाँ बल जाई लख लख लख बरिया जिन प्रम पर्दा खोला राम। एक कथन उस अकाल पुरख प्रभु तो वारे बलहारे जान दी बात करता है। अकाल पुरख परमेश्वर बहुत वड्डा आसरा है, वो आप कृपा करके सच्चे गुरु नाल मिलाउंदा है। सच्चा गुरु परम दे पर्दे खोलता है, तांते फिर ऐसे सच्चे गुरु तो बलिहार जाना चाहिदा है। गुरु दे बचन इलाही बोल हुंदे ने, जिन्हां नूं सरवण करके मन मौलिया जांदा है, मन दे विच खेड़ा आ जांदा है। राग तुखारी विच उचारत शंत विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि मैं उस सच्चे गुरु तो वारने जानी हाँ, ते उसनूं अपना मन अर्पण करनी हाँ, जिसका सोहना शब्द सरवण करके मेरा मन मौलिया गया है। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सरवण करदे हाँ भाई रविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। इस शब्द का गायन किया सी भाई रविंदर सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दर्शन सिंह।
1: तुखारी छंत महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना यह मन पीना ज्यों जल मीना

सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

सकल मनोरथ पूरी आसा, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो, भगत जोग कौ जैत वार, हर जन को उपाया, शब्द गुरु पर कास्यो, हर रस

हाथ जोग आलीना गोर शव दे मन मानिया अपतीज पतीना गोर नानक सच नीम साज सत गुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीना गुर नानक सच नीम साज सत गुर संग लीना।

खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आज जो नी संभव्यो सुजस कल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निधान गुर रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस प्रमाण साध जीवन अर्जुन अमोल आजोनी संपो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गैन प्रम प्रांत दैन शीतल सुख दातो असंभो उद्वयो पुरख पूरण विदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तो

अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमरत छत्र गुर रामै दियो। गुर रामदास दर्शन परस, कह मथुरा अमृत बैन। मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जुन।

आदि पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भूमंडल छायो पारस परस

परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परम पर पुरख स्यो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाहीं और काम स्यो मथुरा को प्रभ।

अंत न पावत देव सभै मन, इंद्र महाशिव जोग करे। हुन वेद बरंच विचार रहो, हर जाप न छाड़ियो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत

0: रूप प्रगट हरि नाम उदाहरण बसै संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो भयो तेह समसर सोई तरन गगन नव खंड मय ज्योत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर।
1: अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो।
2: देवपुरी मैं गयो

0: रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै। असुर गेते भाग पाप तिन पीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के गुरु राम दा जिन पायो। शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। काटे सो पाप तिन नरों के गुरु राम दा जिन पायो। शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो।
1: सतगुर खेमा ताणिया।

अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सजन सच्चा पातशाह, सिर साह दैसाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा।

बोल दी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय, वार श्री भगौती जी के पातशाह दसवीं, प्रथम भगौती सिमरका गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गौर ते अमरदास, रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईया। जैस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय।

0: पहला नानक मेर शरीर का क्रत है क्रतवा जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझेता है सात जुग रात संतोख का धर्म ग्रथवा हो तेरे तेरा जद का जो अग रथवा हो द्वापर रथ तपे का सात ग्रथवा हो कल जुग रथ गण का कूड़े अगे रथवा हो महला पहला
1: काम कहे सितंबर स्वामी सत में अच्छे साथ रहे सबको सत समावर कर अपरपूर नाम देवा में सु नाय लय प्रच जयनन कम खंतर पै जुज में जोर छली चंद्रावल पान किसम जात भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में वेद तर्म हुआ नाउ खुदाई लो पया नील बस्तले कपड़े पहरे तुर्क ठाणी अमल किया चारे वेद होए सचार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सद

0: कहे से तंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सबको सच समावे। ऋग कहे रहया पर पूरा नाम देवा मैसु नहीं लय प्रच जय नानक मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान किसन जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया। कल मैं बेद थर्मन हुआ ना खुदाई लो पया नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुर्क उठानी मिल किया। मानस खाने कर निवास श्री वगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दोना प्यावे ओई रास कूड़ा व्यापार कूड बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई
1: नील बस्तर प्रमाण मलेश
0: ले पूजे।